से मुकत पए जिन हर त्याया जी, तिन टूटे जम की फासी। जिन निरपहो जिन हर निरपहो त्याया जी, तिनका पहो सब गवासी।

तथा सीतो सीता मैं ममाहिता के रूप न कथने जाहि ना मरह न ठागे जाहि जिनका राम वसै मन माहि तथा भक्त वसह के लोह करह अनंत सच्चा मन सोई सचखंड वसै निरंकार कर करो वेखाय नदर निहाल तथा खंड मंडल और भंडे को कथाय तयंत तथा लो लो आकार जिव जो हुकम तिवै तिवकार वेखै वेख सह कर विचार।

पहने का मत प्रचंड मितगत अखंड गोविंदी मुकंदी उदारी अपारी हरियंकरियं रे नामे अकामे पुजंग पर्यात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मानिए चत्र चक्र दानिए चाचरी शांद न सत्रय न मित्रय न परम न पित्रय न कर्म न काय जन्म न जाय न चित्रय न मित्रय प्रे है पवित्रय प्रति सयादि सयादृश्य कृष्ण भगवती संतव प्रसाद कहते किया सिद्धि से किया भिज भेसा किया गंज कर्म किया पंच पर मैं किया भिज लोक किया दित सो कह के भूत भरने के विभूत करने के राजम प्रवाह धर्म तुझा है कि आसुक भरने के आसुक भरने के सर्वा भरने के जग पंकृति है कि शत्रंग क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप है कि अनुपन रूप है कि आदा देव है कि आप अपेव है कि चित्रंग महीने के अधीन है कि रोजी रजा के रही मेरे हक है

करीम है, किस सर्वंग कली है, किस सर्वंग दली है, एक सर्वत्र अवमानी है, एक सर्वत्र दानी है, एक सर्वत्र गौण है, एक सर्वत्र पौन है, एक सर्वत्र देशा है, एक सर्वत्र पेशा है, एक सर्वत्र सर्वत्र राज है, एक सर्वत्र साजा है, एक सर्वत्र दीन है, एक सर्वत्र लीन है, एक सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र पोख है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मानिय सदैव प्रधान, एक सर्वत्र जापी, एक सर्वत्र थापी, एक सर्वत्र पान, एक सर्वत्र मान्य, एक सर्वत्र इंद्र, एक सर्वत्र चंद्र, के सर्वं कली में, के परमं फही में, के आकल अला में, के साहिब कला में, के हुस्न उर्वजू है, तमाम उर्वजू है, हमें सुर सलाम में, सली खत मुदा में, गनी मुल शिकस्त है, गरीब उल परस्त है, बिलंदुल मकान ने, जमीन उल जमान ने, तमीज उल तमाम में, रजूल निदान ने, हरीफ उल आजीम में, रजायक यकीन ने, अनेक उल तरंग है, अभेद है, अपंग है, आजीज उल निवाज है, गनी मुल खराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सोजुक्त सुधा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्त उपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है।

आसन चिंत है सुनिंत है आलिख है आदिख है आलेख है अपेख है अटह है अगह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शांत है प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग अंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग कर्म सर्वंग धर्म सर्वंग युक्ता सर्वंग

स्वरूपे अभंगं वे भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध वे भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता है नृसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रवाह है अजय है अजा है भगवती छंद त्वे प्रसाद के जा हरजूर है कि हाजर हजूर है हमें सुलो सलाम है सुमस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि उसमें चराग है कि काम करीम है कि राज करीम है कि रोजी देहंद है कि राज करहिंद है करीम उल कमाल है कि हुसन उल जमाल है गनीम उल खिराज है गरीब उल निवाज है हरीफ उल शिकन है हिरास उल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्त उल निवास है कंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्त उल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकं प्रणास है बहिस्त उल निवास है कि सर्प उल गुवन है हमेश उल अरवन है मामुल तमीज है समस्त अजीज है परम परमीस है समस्त अदीस है अदेसुल अलेख है हमेसुल अपेख है जमीन उल जमा है अमी कुले मा है करीम उल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचुन प्रकाश है कि अमितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो प्रसाद है कि आत्म प्रवाह है कि अचल अनंग है कि अमितो अपंग है मद पार छंद त्वे प्रसाद मार बरे अगन हर नर परपान्य अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम और शेजे अंग आसन अभंग उपमा अपार गत में तू उदार जल थल अमंड दिस विश्व पांड जल थल महंत दिस विश्व बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास हुआ जान बाहु एक सदा हु अंकार आदि कथनी अनाद कलखंड के आल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरना मन छिजगात अजिजन बातन चंजगातन रंज बातन टुट भंडारण ठट अपार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अणभ्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना

जिन प्रेम की ओतनी ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पिशाह को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन थायो

मूर्छा निज करद करिए सब बैरन कौआ संघरिय पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाट कोई वरना ध्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है टन टन सत्र हमारे मारी है

जब युद्ध करख करा करतारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा है आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरा निरालम जान भेद भेद अर आलम निर

जाय। न जाय सह सकत है संजम रहे कर्म कमाए, सह सह जीव मलीन है कित संजम धोता जाए, मन धोवो सबद लागो।

करणी कमाणी कूट की सोए पहुचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सिमण जारे कह नार जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै तसन

संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवेता सतगुर रहया पर पूरे बिरवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तूरे।

रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण तिहाइय जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत

सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास।

तेरी पूजा। तेरा महल अगोचर मेरे प्यारे, बिकम तेरा है पाणा, कहो नानक टह पया द्वारे, रख ले वो मुगध अजाणा। बसंत हिंडोल महला पैमा, मूल न बूझे आप न सूझे, परम व्यापी अहंगमणि। पिता पार ब्रह्म प्रभ तणी, मोह निस्तारो निरगुणी, रहाओ उपत परलो प्रभ दे होवे, ए बेचारी हर जणी।